भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों की गैर कानूनी

0: ने व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के फेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए संयम और शांति से हर परिस्थिति से निकलना चाहिए। ये था आज का कथन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोखा में लीजिए सुनिए आज प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 286 6:35 से। 6:45 से सुबह व शाम संगीत सरिता, इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का चौथा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेता सैफ अली खान।

स्थान पर। समय सुबह व रात्रि 9:30 से। दस बजे पिटारा में आज के मेहमान अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 से यादों की महफिल और 1 बजे से सुरीला सफर। दो बजकर 30 से वक्त होगा सदाबहार नगमे का। दिन में 3 बजे से सखी सहेली। विषय होंगे विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोली। कहानी पद्मश्री में चित्रकार गोदावरी दत्त। मुझे कुछ कहना है में जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना और उपयोगी टिप्स में कपड़ों की उम्र होगी लंबी। चार बजे से पिटारा में हेलो फरमाइश। पांच बजे से सुनिएगा छाया गीत। 5:30 से तराने नए पुराने।

6:35 से लेकर आएंगे संध्या रंजन में भक्ति गीत। सात बजे से वक्त होगा फौजी साथियों के लिए जयमाला का। सात 7:45 से इंद्रधनुष में इनसे मिलिए। गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। रात 8 सुनिएगा हवा महल में प्रहसन। अभिनेत्री से भेंट, लेखक श्री एन राघवन, निर्देशक मुख्तार अहमद। 9 से लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम। 10 छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 286।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: स्वागत है श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: आज इस कड़ी में मिश्रा जी कौन सा ताल आप प्रस्तुत करेंगे?
1: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस ताल प्रवाह के अगली कड़ी है हमारी तालों का राजा 16 मात्रा 3 ताल मध्य लय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खास बात बताना चाहूंगा श्रोता, हमारा जो अंदाज है बनारस घराना है, उसमें हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं पंडित गुरु आचार्य पंडित राखाल मिश्र दास बाबू। वो बहुत बड़े गवैया हुआ करते थे पिताजी हमारे, 102 साल के थे उनका अंत हुआ। और उनकी बड़ी इच्छा रही कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि हमारे सारे भाई गाना गाते थे, बड़े भाई दीनानाथ जी भोलानाथ जी सब गाना गाते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं गवैया बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ताल अच्छा लगता था। शायद वो अगर वो नहीं सीखे होते तो हम आज संगीत सरिता में ताल प्रवाह को लेकर नहीं पहुंचते। तो हम धन्यवाद देते हैं, पिताजी का नाम था पंडित राखाल मिश्र, हमारी माताजी का नाम था चंद्रावती देवी मिश्रा। वो भी हमारे सारे नाना भी गाना गाते थे, दादा दादी भी गाना गाते थे। मैंने ताल को लेकर चुना तो आज हम मध्य लय के ओर बढ़ते हैं 3 ताल की तरफ। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इसका आनंद उठाइए और इसका मैं कुछ एक अलग अंदाज प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
0: बहुत

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता की इस कड़ी में श्रोताओं आप सबका स्वागत है।

बड़ा प्रचलित है धीरे धीरे की रीतक तबले का अंदाज है। तेरे की रीतक धीरे धीरे की रीतक, तेरे की रीतक तुन्ना की रीतक, तेरे की रीतक तेरे तेरे की रीतक, तेरे की रीतक धन्ना की रीतक, तेरे की धीरे धीरे धीरे की रीतक, तेरे की रीतक तुन्ना की रीतक, तेरे की रीतक तेरे तेरे, जैसे समंदर में लहर उठता है ना, तो धीरे की का बड़ा सुंदर

0: आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं दास बाबू। गुदई महाराज
1: जी,
0: उनका धृकित लाजवाब था
1: जी,
0: गुरु जी का थाप का धृकित किशन महाराज जी का, तो घृणक और धृकित का अंदाज़

0: पलटा, जैसे बोलते हैं कि आप कैसे बोलों को पलटते हैं
1: जी,
0: पर उसका लहजा अच्छा होना चाहिए, बोलों के साथ उल्टा पलटा करना।

अब इसको हम खत्म कैसे करेंगे इस कायदे को? तो हम तिहाई भी बजा के खत्म कर सकते हैं, टुकड़ा बजा के खत्म कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा है, धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन

0: कालिना जी, आपने पलटे का नाम लिया, इस सिलसिले में मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बनारस के कुछ खास पलटे होंगे, अलंकार होंगे, कायदे होंगे, पेशकार होंगे, फर्द होंगे, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: दास बाबू, एक्चुअली बनारस ही नहीं, सारे घराने, अजराला घराना हो, लखनऊ घराना हो, फरुखाबाद घराना हो
0: जी,
1: पलटे तो सब में होते हैं। अगर आप कोई कायदा ले रहे हैं
0: जी,
1: उसको जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो आप कैसे बजा पाएंगे, उसका विस्तार तो करना पड़ेगा मुझे, उसी को कहते हैं पलटा।
0: अच्छा,
1: रहा फर्द का सवाल, तो फर्द एक अलग अंदाज हो गया, वो मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तो श्रोता, हमने 3 ताल की प्रस्तुति की और मैंने पहले भी कहा था कि सामता प्रसाद जी गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है फिल्मों के लिए। उनका जन्म के बारे में बता दूं कि बनारस के लाजवाब कलाकार थे, उनका नाम था सामता प्रसाद, लेकिन बाएं का ऐसा स्टाइल था, बाया ऐसा गुदगुदाते थे कि उनका नाम रखे, अनोखेलाल जी का भी नाम रखे और इनका भी नाम रखे विलायत खान साहब, उनका नाम था अनोखा मिश्रा।
0: अच्छा।
1: हाँ, पर उनका नाधिन धिन्ना ऐसा था अनोखेलाल जी का कि उन्होंने, खान साहब ने, विलायत खान साहब ने झाला में रखा कि यार तुम अनोखे हो एकदम। उसी तरह से कि बाएं का काम ऐसा गुदई महाराज जी दिखाते थे, तो उनका नाम गुदई गुदई गुदई गुदई महाराज पड़ गया। तो एक श्रोता हो, चलिए हम थोड़ा फिल्मों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि फिल्मी संगीत भी हम सुन लेते हैं थोड़ा उसका अंदाज। तो बड़ा सुंदर गाना है, नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, तो एक बार बजा के सुना देता हूँ। नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, ये खास गुदई चचा का बोल है।

0: que d'un.
1: ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती प्रोग्राम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, बूट पॉलिश फिल्म का नाम था। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में ये गीत शबाब फिल्म से अभी आपने सुना। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।

फिल्म किस्मत से गीत अभी आप सुन रहे थे अमीर बाई कर्नाटक की और अरुण कुमार की आवाजों में। कवि प्रदीप ने इसे लिखा, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: जाना। अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम। मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत संपन्न होता है।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता, अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी। वीको टर्मरिक WSO क्रीम।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
0: यह है विविध भारती, हम है राही प्यार के प्रोग्राम लेकर आते हैं कुछ ही पलों में।

0: अंगे एक अहवाल।
1: श्री गोयल चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री गोयल सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से इस्ताना में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्केन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ सरकार और उद्योग के बीच सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।
0: दरमियान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर गईकाले सिंगापुर पहुंच्या बाद सिंगापुर विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने मळ्या हता। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडूए जणाव्यू छे कि सरकार 2030 सुधी में एर कार्गोना जत्थाने 3 गणो वधारवानुं लक्ष्य राखे छे। हाल में देशनुं एर कार्गोनुं प्रमाण आशरे 35 लाख मेट्रिक टन छे। दिल्ली एरपोर्टथी एर कार्गो कनेक्टिविटी वधारवा माटे ट्रांस कार्गो सिक्योरिटी होल्ड एरिया हेठळ नवा क्षेत्रोना उद्घाटन प्रसंगे बोलता श्री नायडूए जणाव्यू कि आ सुधारानो हेतु एक ज इंटरमीडिएट एरपोर्ट द्वारा स्थानिक अने आंतरराष्ट्रीय स्थळो वच्चे कार्गोनी अवरजवरने सरळ बनावानो छे। राज्य सरकारे अनेक भर्ती परीक्षाओ रद्द करवाना अने कथित गैररीतिओनी तपासना आदेश आप्या बाद झारखंडमां विद्यार्थीओ द्वारा 26 दिवसथी चाली रहेला विरोधनो अंत आव्यो छे। जो कि आ निर्णयथी रद्द करायेली परीक्षाओ द्वारा पहेलाथी ज नियुक्त करायेला उमेदवारो द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू थयुं छे। सांभळीए आ अंगे एक अहेवाल।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। इसके विरोध में JSSC CGL से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: विज्ञान अने टेक्नोलॉजी मंत्रालये एक नवी दवानी जाहेरात करी छे जे परंपरागत कीमोथेरेपीनो विकल्प बनी शके छे। RK-251 नामनी आ दवा तंदुरस्त कोषोने नुकसान पहोंचाड्या विना केन्सर कोषोने निष्क्रिय बनावे छे। मंत्रालये आ परिणामने साकार करवा बदल इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजीना संशोधको अने IIT गुवाहाटीना निष्णातोना सहयोगी कार्यनी प्रशंसा करी। आ दवाए आक्रमक ट्रीपल नेगेटिव स्तन केन्सर कोषो सामे मजबूत असरकारकता दर्शाई छे, ज्यारे स्वस्थ कोषो पर तेनी असर ओछी पड़ी छे। शिक्षण मंत्रालये युवा संगमना 7 तबक्का माटे ऑनलाइन नोंधणी माटेनी छेल्ली तारीख आ महिनानी 31 तारीख सुधी लंबावी छे। मंत्रालये जणाव्यु हतु कि आ मिश्रणथी देशभरना लायक युवानोने आ अनोखा युवा विनिमय कार्यक्रममां नोंधणी करावा अने भाग लेवानी बीजी तक मळशे। 18-30 वर्षनी वयना युवानो, जेमां उच्च शिक्षण संस्थाओमां विद्यार्थीओ, NSS स्वयंसेवको अने युवा व्यवसाय कोनो समावेश थाय छे, सत्तावार युवा संगम पोर्टल द्वारा नोंधणी करावी शके छे। युवा संगमना 7 तबक्का माटे IIT, IIM, केन्द्रीय युनिवर्सिटीओ अने NIT सहित 20 उच्च शिक्षण संस्थाओने आ विनिमय कार्यक्रमनुं संचालन करवा माटे नोडल संस्थाओ तरीके पसंद करवामां आवी छे।
3: આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો। આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ AIR ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો। વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/GU અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIR_ABAD ને ફોલો કરશો।
0: ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જીયો ગોરે ગઈકાલે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે કેન્દ્ર અને પ્રાદેશિક સરકારોએ સુરક્ષા વધારવા માટે નોંધપાત્ર પગલાં લીધા છે।
4: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहां आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: શ્રી ગોરે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની તેમની પ્રથમ મુલાકાતમાં શ્રીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા સાથે તેમના નિવાસસ્થાની મુલાકાત કરી હતી। ડિરેક્ટરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ DRIA લખનૌમાં હાથીદાંતની કલાકૃતિઓના ગેરકાયદેસર વેપારમાં સંડોવાયેલી વન્યજીવન દાણચોરી કરતી ટોળકીને ઝડપી લીધી છે। દરોડામાં 54 કોતરણી કરેલી વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે। જપ્ત કરાયેલી વન્ય વસ્તુઓમાં કાતર, કાંસકો, અગરબત્તીઓ અને સિંદૂરના બોક્સનો સમાવેશ થાય છે। DRIAના જણાવ્યા મુજબ આ કલાકૃતિઓ ખૂબ જ જટિલ રીતે બનાવવામાં આવી છે। ધરપકડ કરાયેલા 4 સભ્યોને વધુ તપાસ માટે ઉત્તરપ્રદેશ વન વિભાગને સોંપવામાં આવ્યા છે। બાંગ્લાદેશમાં 35 વર્ષના અંતરાલ પછી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે આજે બપોરે 2 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી સંસદમાં મતદાન થશે. શાસક પક્ષ

0: શ્રોતો મિત્રો, હમણાં જ આપ ગુડ્ડી ફિલ્મનું આ ગીત સાંભળી રહ્યા હતા, જેનું પ્રસારણ વિવિધ ભારતીના વડોદરા કેન્દ્રથી કરવામાં આવ્યું. થોડી જોરમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: ये है विविध भारती. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है. पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा. तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर सूर्य घर.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी. गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा. बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा. ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी. और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी. और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

0: जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4था संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।

0: पोजीशन ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द
1: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: विद क्लियरली डिफाइंड माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस।
2: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
1: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे

0: नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमरीकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: सनम पुरी और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

वाजिद अली को अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में तेरी मेरी कहानी फिल्म का नाम था। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत।

0: डियर जिंदगी ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित त्रिवेदी का संगीत और कौसर मुनीर ने इसे लिखा। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: आप समृद्ध शो विविध भारती वडोदरा केंद्र सारा गणदेविकर ज्वेलर्स टाइम अत्यारे सवा ना 9 वाग्या छे। शुकनू सोनू तो सारा गणदेविकर नो ज સારાનું સોનું સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિનું સોનું સારા ગણદેવીકર જ્વેલર્સ દાંડિયા બજાર અને વાઘોડિયા રોડ વડોદરા।
2: આ વાર્તા છે એક નર્સ અને એના અંતરમનની। આવી ગઈ સેલરી, હવે નવી બુટ્ટી
3: ના, પહેલા બચત,
2: પહેલા બુટ્ટી।
3: સાંભળો, દર મહિને થોડું બચાવો, થોડું રોકાણ કરો અને થોડું એમરજન્સી માટે પણ બચાવો, જેથી રહો ચિંતા મુક્ત।
2: પણ બુટ્ટીનું શું
3: જાય છે કે મારું ઇન્જેક્શન?
4: આરબીઆઈ કહે છે,
5: નાણાકીય સમજદારી સમૃદ્ધ નારી।
6: રંગમંચ સે રૂપેલે પર્દે તક કુછ અનકહે કિસ્સે, કુછ યાદગાર કિરદાર।
7: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
6: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
8: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
6: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

0: दुनिया।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
4: जी।
3: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही

और उनकी एक झलक पाते ही भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

ये दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती, बेफिक्र, अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स

ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ आ गया।

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

हम तुम फिल्म में सिर्फ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

0: के लिए।
1: सैफ अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है।

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉफी।

क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीग से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शिफ्ट। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग दी। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्रेट गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: इसकी चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे।
0: इसके दांत तो देखो।

कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन।
2: नो।
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

93.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वडोदरा केंद्र। श्रोता मित्रों, आज फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर संगीतकार खय्याम साहब पर।

खय्याम साहब यानी मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी, भारतीय सिनेमा का वो नाम जिन्होंने संगीत को सिर्फ धुन नहीं बल्कि एक रूहानी एहसास बनाया। शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ और गजलों की नफासत को जब उन्होंने अपनी धुनों में पिरोया तो कालजयी संगीत का जन्म हुआ। आइए इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं 1979 के इस सुपरहिट फिल्म नूरी के एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज दी है।

0: વડનેર કર જ્વેલર્સ વડોદરામાં સૌભાગ્યના દાગીના તો ફક્ત વડનેર કર જ્વેલર્સના જ. વડનેર કર જ્વેલર્સ, બ્રહ્મપુરી, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.
1: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी. अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है. नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स, दांडिया बाजार, 9825027525. सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी. ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी.
0: दोस्तों, क्या सादगी और मिठास थी इस धुन में. खयाम साहब का संगीत हमेशा फिल्म के माहौल और किरदारों के जज्बातों को बखूबी बयां करता है. वर्ष 1981 में आई फिल्म ना खुदा का संगीत भी खयाम साहब ने ही तैयार किया था. लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया ये गीत दिल के तार छू लेता है. आइए सुनते हैं ना खुदा से कार्यक्रम का अगला ये सदाबहार नगमा.

श्रोता मित्रों, खय्याम साहब की एक बड़ी खासियत यह भी थी कि वह हर शब्द की गहराई को समझते थे। जब उन्होंने निर्देशक कमल अमरोही की ऐतिहासिक फिल्म रजिया सुल्तान का संगीत रचा, तो उन्होंने अपनी धुनों से उस दौर की भव्यता को जीवंत कर दिया। कवि निदा फाजली के लिखे शब्दों और काबान मिर्जा की रूहानी आवाज से सजा फिल्म रजिया सुल्तान का यह सूफियाना शाहकार नगमा अब आपके लिए पेश खिदमत है।

तेरा हिज्र मेरा नसीब है, यानी कि तेरी जुदाई ही मेरा नसीब है। दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद मन एक अजीब से शांति और गहराई से भर जाता है। यही जादू था खयाम साहब की उंगलियों का। आइए अब रुक करते हैं 1982 में आई फिल्म बाजार की ओर। सागर सरहदी की इस फिल्म में खयाम साहब ने मिर्जा शौक, मखदूम मोइनुद्दीन और बशर नवाज जैसे बड़े शायरों के कलामों को धुनों में बांधा था। आइए सुनते हैं जगजीत कौर की आवाज में गाया ये गीत, वियोग और सादगी का जो बेमिसाल नमूना है। सुनते हैं बाजार फिल्म से ये मरस्पर्शी गीत।

दोस्तों, खय्याम साहब के संगीत की बात हो और उमराव जान का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1981 की इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए खय्याम साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। शहरयार की लिखी गजलों और आशा भोसले की गायकी को खय्याम साहब ने जिस तरह तराशा, वो भारतीय संगीत इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। आइए सुनते हैं फिल्म उमराव जान से तलत अजीज की नशीली आवाज में शहरयार की ये बेहद मकबूल गजल, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें।

गीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। इसी गीत के साथ आज का मशहूर संगीतकार खयाम पर केंद्रित यह फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आपके कोई अन्य सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है फिल्म संगीत विभाग, आकाशवाणी रेडियो स्टेशन, मकरपुरा रोड, वडोदरा, पिन कोड 390009, गुजरात। दोस्तों, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अब आपके इस दोस्त धवल परमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ और नगमों के साथ। तब तक सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम आप तक पहुंचा विविध भारती के वडोदरा केंद्र से।

जब भी जिंदगी प्यार की महफिल यानी कि बज्म मिलाती है, तब ये साधारण सी धरती भी चांद से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगने लगती है। दोस्तों, खयाम साहब का संगीत एक ऐसा समंदर है जिसमें हर बार डूबने पर एक नया मोती निकलता है। 1976 की फिल्म कभी कभी हो या त्रिशूल, उनके दिए नगमों ने हर पीढ़ी के संगीत

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर

0: स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी रात। इस फिल्म से मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, संगीत है रोशन का।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: गिरीश भाई गणदेविकर ज्वेलर्स। शुभ अवसरों में सोनानी खरीदी माटे विश्वासपात्र नाम गिरीश भाई गणदेविकर ज्वेलर्स, जेतलपुर ब्रिज पास अलकापुरी वडोदरा।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश। इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के, संगीत है कनू रॉय का।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है जो हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहना है आज तुमसे कुछ कहना है, हाँ मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी झुकी झुकी नजर कहती है तुम मेरे थे और मेरे ही हो। आज तक जो कहा तुमने कहा, फिर दिल ने भी तो दिल से जाने क्या कहा। मैंने तो फूलों से कहा था और चंद्रमा से कहा था कि जाओ उनसे कह दो, पर जाने क्या मैंने कही और जाने क्या उसने सुनी। बात बस कुछ कहने की नहीं है, बात यह है कि हम क्या कहते हैं। हमारे कहने की कुछ सीमाएं हैं, सोच समझ कर कहें। कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, उतना ही कहें जिससे आपसी सद्भावना बनी रहे। माँ ने भी यही कहा था, कभी दिल किसी का न तोड़ो। अब ये न कहना कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। ये आज की इबारत है या टेक्स्ट है जो हमने विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा है और बहुत सारी बातें भी लिख भेजी है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल के किसी कोने में बहुत देर से चुपचाप बैठी होती है, किसी से कह भी नहीं पाते। कभी लगता है कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा, कभी डर लगता है कि सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। पर सच ये है कि जो बातें हम नहीं कहते वही हमें सबसे ज्यादा थकाती है। कितना कहना है, किससे कहना है, मन इसी उथल पुथल में रहता है। लेकिन कहना जरूरी हो तो उतना ही कहें जितने से दिल हल्का हो जाए। कही गई बातों के शब्दों की गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखती है उन शब्दों की सच्चाई और गहराई जो सुनने वाले पर असर कर जाए। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि जो महसूस होता है उसे दबाइए मत, जो दिल से अपने लगे उन अपनों को बताइए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा रोइए और दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है, कहने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। एक हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि शब्दों का खेल भी अजीब है, कभी आंखें सब कह देती हैं तो कभी जुबां भी खामोश रहती है। लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं मर्यादा की है। सोच समझ कर बोले गए शब्दों शब्द दिलों को जोड़ते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात बरसों के रिश्ते तोड़ सकती है। बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है कि वाणी में मिठास रखो और किसी का दिल मत दुखाओ। इसलिए उतना ही कहें जिससे आपसी प्यार बना रहे। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब गाने सुनने की ओर हम रुख करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गाना है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है। किशोर कुमार की आवाज से राजेंद्र कृष्ण के बोल है, सुनील दत्त सायरा बानू पर फिल्माया गया है, साथ में किशोर कुमार भी इसमें दिखाई देते हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। कुछ हमारे आज के जो सवाल हैं वो हम

इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आर डी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रही कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन की सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी, इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी बड़ी ही सुहानी। बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी बातों के लिए। और जो कुछ आज के हमारे सवाल है कहने

0: पर से। तो पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत अच्छी बातें कही हो और उसने उन बातों को माना भी हो और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाज़ें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रही हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही है उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की आजादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ तीन शब्द समाये हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। मिली फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते, बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहूं शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है या

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना प्यासा फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज में।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके

अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर

0: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

0: शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
1: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: में जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना। कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो, इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: नदी नारे हाँ।

बीच धारे जो जाओ तो जय पे करो उस पारी उस पारी।

0: संसवतिया न लाओ शाम पैया परू, संसवतिया न लाओ।
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म का नाम शराबी।

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के,
0: हाय हाय गुरूर।

आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
1: चंचल जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
1: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
0: हाँ।
1: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहां इशारों में भी बातें होती है, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी
1: जी।
0: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
1: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में हम
0: बात करेंगे। और चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
1: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां, सब सखा, सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
0: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप किसी भी समय कुछ भी खाते हैं। और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, ऐसा लगने लगता है।
1: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है। चटोरापन कह सकते हैं।
0: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
0: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है, इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है? सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो, और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है, और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
1: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का

0: दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें, गीत
1: गीत सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहाँ बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गांव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का

0: जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
1: बिल्कुल ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिला ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
0: बिल्कुल संयुक्त परिवार होते थे उस समय तो सब साथ में होते थे तो कोई कोई भी सिखा देता था है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
1: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
0: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
1: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
0: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
1: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र बना
0: दिए थे।
1: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासी में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
0: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
1: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं तो सुन ले।
0: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शॉल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुनिए एक गाना,
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है। जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया।

0: उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जाने। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो

0: ये भी एक लंबी लिस्ट है.
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी.
0: हाँ
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कारबी, खासी, कोडवा, कुकबरा,
0: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने
1: लेपचा.
0: नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि
1: बिल्कुल,
0: विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं.
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है. तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी.
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है. भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं. भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है. अगर लिपि से हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं.
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं. अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है. सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहालीस, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है.
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है. और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा. इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये. और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं.
1: बिल्कुल,
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए. बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए. भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं. ये बहुत सही बात है. कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है, या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है. अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा.
1: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती. किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज, रिश्तों की आत्मीयता और लोक मानस की सहजता दिखाई पड़ती है. जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं, जुड़ी हुई जो उनकी लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी.
0: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सीडैक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है. देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है. और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें.

0: लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकता है।
1: देखो जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है, या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व।
0: और साथ ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
1: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें पढ़ना

0: आज चंचल एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ हैं वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ हैं, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था उसका एक अपना रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोक गीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन यह नहीं हो सकता। और बात केवल

0: भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है। हाँ। और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात है।
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि इसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सोचता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खाकर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: हाँ, कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, हाँ, या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए,
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके, हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो.
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल.
1: ही बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, यही सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल.
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, मैंने हमने भी निकाले तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है.
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ने बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल.
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसकी वो पहने उनके काम आए.
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है। उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल. और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए. इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं.
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: एक हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती है कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में न डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: तुझको। आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बंद कर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा कुंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी। बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है। तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की सिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। मुझसे बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना बारह महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी,
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक हैं आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
0: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं, अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांच शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैम।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल, तो बताइए हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी एक फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है,
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारिया, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। मैं राम नरेश संजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है, तिल्ली खाते हैं, वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है का प्रबंधन करते हैं खेत के चारों तरफ, जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्रांग नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही है?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी है और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: जी निकलता है, एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं
1: भारती कार्यक्रम। हेलो फरमाइश, सखी सहेली, और वो सेतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी, छठे लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो।
1: हाँ।
0: और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं, की खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहे हैं, बिमल बसुमतारी मैम।
0: बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं?
1: जी, मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ, बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी मैम, हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया, लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं? तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए, कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम, हम 12 साल से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी मैम, हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
0: तो बाकायदा कोई कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी उधर दुकान एक था, वो दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
1: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी मैम, मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा।

0: रहता हूँ।
1: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
0: असम के बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है। कहीं कहीं बहुत है मैम, हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
1: बड़ा खूबसूरत है, हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
0: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: जी मैम, मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
1: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288 यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466 यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर

0: ने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: धिन चड़ात, आ जाओ।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं न कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे अब।

सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स, डांडिया बाजार, 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना? मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हाँ, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थे, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गए। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थीं। उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद यही तारे यही हवा हमारे मिलन के गवाह बने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत अमित कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: इज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
6: आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, धुन तैयार की है अनु मलिक ने, फिल्म का नाम है राधा का संगम।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस

0: रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुनते हैं आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों को। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती के चाहने वालों के लिए अगला गीत है सोनू निगम की आवाज में। समीर का लिखा गीत है, संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है संघर्ष।

0: साथियों, अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। संगीत था जतिन ललित का, फिल्म का नाम था संघर्ष।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया।
2: विविध भारती नु वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। पूजा प्लस पूजा मॉनसून सेल मां आ वर्षे फायदा नो वरसाद। मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट। पूजा प्लस रावपुरा वडोदरा।
3: बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर? किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

साथियों, कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं कविता कृष्णामूर्ति और किशोर कुमार की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

उसकी दीवानी बनती हो तुम खुद भी किसी से कम तो नहीं, वो कोई एटम बम तो नहीं। अरे

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया के रंगू किया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: दोस्तों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार है समीर, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन, 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता, 7:00 सुनिए फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जय माला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, मैं सुनिए गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए प्रहसन अभिनेत्री से भेंट, 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है अभिनेता सैफ अली खान पर, रात 10:00 छाया गीत में आज सुनिए नेहा अगरकर को, कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 287, 287 संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए ताल परवा तबला वादक श्रृंखला की 5वीं कड़ी, कलाकार है पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 6:45 पर। एक बार फिर सुनिए ताल परवा तबला वादक श्रृंखला की 5वीं कड़ी में कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र को। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के, 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष श्रृंखला का 42वां भाग सुनिए, लेखक है मिलिंद सबनिस, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 2:00। पर आज के फनकार, कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। इस कार्यक्रम को दोबारा सुना जा सकता है रात 9:30 पर। कल दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीत सुनवाए जाएंगे हेलो फरमाइश में, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी।

दिन में 11 बजे मिश्रित संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रंग तरंग। बारह बजकर 5 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। और आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। दिन में 3 बजे सखियों के फरमाइशी गीत सुनिए, कार्यक्रम है हेलो सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी में सुनिए उर्मिला श्रीश की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचन स्वर है ममता सिंह का, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम सुनिए तरानी नए पुरानी। कल शाम 7 बजे सुनिए फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से की गई जयंत पात्रिकर की बातचीत का 7वां भाग, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे झलकी विदेशी समधी। लेखक हैं एस अतहर अली, निर्देशक हैं मीनाक्षी मिश्रा। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। कल रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए अनुराधा को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए एक भक्ति रचना पुष्पा पगधारे, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में। इसमें और आवाजें हैं, अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी की आवाजें इसमें आप सुनेंगे। इस गीत को लिखा है अभिलाष ने, संगीत है कुलदीप सिंह का, फिल्म का नाम है अंकुश।

अगला प्रार्थना गीत सुनिए साथियों की आवाजों में। रचना है भरत व्यास की, संगीत है वसंत देसाई का, फिल्म का नाम है दो आंखें बारह हाथ।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता की इस कड़ी में श्रोताओं आप सबका स्वागत है। स्वागत है श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: आज इस कड़ी में मिश्रा जी कौन सा ताल आप प्रस्तुत करेंगे?
2: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस ताल प्रवाह के अगली कड़ी है हमारी तालों का राजा 16 मात्रा 3 ताल मध्य लय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खास बात बताना चाहूंगा श्रोता, हमारा जो अंदाज है बनारस घराना है उसमें हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं पंडित गुरु आचार्य पंडित राखाल मिश्र दास बाबू। वो बहुत बड़े गवैया हुआ करते थे पिताजी हमारे। 102 साल के थे उनका अंत हुआ और उनकी बड़ी इच्छा रही कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि हमारे सारे भाई गाना गाते थे। बड़े भाई दीनानाथ जी भोलानाथ जी सब गाना गाते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं गवैया बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ताल अच्छा लगता था। शायद वो अगर वो नहीं सीखे होते तो हम आज संगीत सरिता में ताल प्रवाह को लेकर नहीं पहुंचते। तो हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी का नाम था पंडित राखाल मिश्र, हमारी माताजी का नाम था चंद्रावती देवी मिश्रा। वो भी हमारे सारे नाना भी गाना गाते थे, दादा दादी भी गाना गाते थे। मैंने ताल को लेकर चुना तो आज हम मध्य लय के ओर बढ़ते हैं तीन ताल की तरफ। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इसका आनंद उठाइए और इसका मैं कुछ एक अलग अंदाज प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
1: बहुत

0: बड़ा प्रचलित है धीर धीर की तक तबले का अंदाज है। तेरी किटी तक धीरे धीरे किटी तक तेरी किटी तक तुन्ना किटी तक तेरी किटी तक तेरे तेरे किटी तक तेरी किटी तक धन्ना किटी तक तेरी किटी धीरे धीरे धीरे किटी तक तेरी किटी तक तुन्ना किटी तक तेरी किटी तक तेरे तेरे जैसे समंदर में लहर उठता है ना
1: जी
0: धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे तो धीरे किट का बड़ा सुंदर अंदाज है।

0: आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं दास बाबू। गुदई महाराज
1: जी,
0: उनका धृकिट लाजवाब था
1: जी।
0: गुरु जी का थाप का धृकिट किशन महाराज जी का, तो घृणक और धृकिट का अंदाज

0: पलटा, जैसे बोलते हैं ना कि आप कैसे बोलों को पलटते हैं
1: जी,
0: पर उसका लहजा अच्छा होना चाहिए, बोलों के साथ उल्टा पलटा करना।

अब इसको हम खत्म कैसे करेंगे इस कायदे को? तो हम तिहाई भी बजा के खत्म कर सकते हैं, टुकड़ा बजा के खत्म कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा है, धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन धीन

0: कालीना जी, आपने पलटे का नाम लिया, इस सिलसिले में मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बनारस के कुछ खास पलटे होंगे, अलंकार होंगे, कायदे होंगे, पेशकार होंगे, फर्द होंगे, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: दास बाबू, एक्चुअली बनारस ही नहीं, सारे घराने, अजराला घराना हो, लखनऊ घराना हो, फरुखाबाद घराना हो
0: जी,
1: पलटे तो सब में होते हैं। अगर आप कोई कायदा ले रहे हैं
0: जी,
1: उसको जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो आप कैसे बजा पाएंगे, उसका विस्तार तो करना पड़ेगा मुझे, उसी को कहते हैं पलटा।
0: अच्छा,
1: रहा फर्द का सवाल, तो फर्द एक अलग अंदाज हो गया, वो मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तो श्रोता, हमने 3 ताल की प्रस्तुति की और मैंने पहले भी कहा था कि सामता प्रसाद जी गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है फिल्मों के लिए। उनका जन्म के बारे में बता दूं कि बनारस के लाजवाब कलाकार थे, उनका नाम था सामता प्रसाद, लेकिन बाएं का ऐसा स्टाइल था, बाया ऐसा गुदगुदाते थे कि उनका नाम रखे, अनोखे लाल जी का भी नाम रखे और इनका भी नाम रखे विलायत खान साहब, उनका नाम था अनोखा मिश्रा।
0: अच्छा
1: हाँ, पर उनका नाधिन धिन्ना ऐसा था अनोखे लाल जी का कि उन्होंने खान साहब ने, विलायत खान साहब ने झाला में रखा कि यार तुम अनोखे हो एकदम। उसी तरह से कि बाएं का काम ऐसा गुदई महाराज जी दिखाते थे, तो उनका नाम गुदई गुदई गुदई गुदई महाराज पड़ गया। तो एक श्रोता हो, चलिए हम थोड़ा

फिल्मों की तरफ भी बढ़ते हैं क्योंकि फिल्मी संगीत भी हम सुन लेते हैं थोड़ा उसका अंदाज। तो बड़ा सुंदर गाना है, नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी। तो एक बार बजा के सुना देता हूँ। नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, ये खास गुदई चचा का बोल है।

ਕਿਹਦੀ ਤਿੱਕਦਾ ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: में घटित होता है, शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को सलमा की ओर से सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सोनू निगम, हरिहरन, विनोद राठौड़ और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है चाइना गेट।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलबेला, इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, तर्ज है जतिन ललित की।

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता

0: संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब प्यार किसी से होता है, फौजी साथियों, इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं जतिन ललित।

फौजी साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं दिलीप सेन। समीर सेन, फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

0: हेलो, कौन? क्या मालकिन से बोलना चाहते हैं? वो इस वक्त नहीं मिल सकती, पर वे तो शूटिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं। अरे भाई, क्या पता किस स्टूडियो में जाने वाली हैं? ओहो, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उनकी तो कई फिल्मों में बुकिंग हो गई है ना। वे खुद भी नहीं जानती कि किस स्टूडियो में जा रही हैं। क्या कहा आप? 4-5 दिन से कोशिश कर रहे हैं? खैर, 4-5 दिन और कोशिश कर देखिए। बहुत से तो 4-5 महीने से कोशिश कर रहे हैं, किस्मत हुई तो शादी हो जाए। नो नो मैच।
1: भाई काशी, क्या मालकिन शूटिंग के लिए जा रही हैं?
0: क्या पता,
1: पर अभी फोन पर तुमने तो कहा था।
0: अरे कोई न कोई बहाना तो करना ही पड़ता है ना।
1: लगता है कि तुम्हारा सारा वक्त फोन पर बोलते बोलते ही बीत जाएगा।
0: फोन को अटेंड करने के लिए ही तो मुझे रखा गया है। जवाब देते देते मेरा तो नाक में दम आ जाता है। उफ, कैसे कैसे सवाल करते हैं लोग। कब खाना खाती हैं, क्या खाती हैं, कितनी कारें रखती हैं, कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हैं, उनको फीका पसंद है या नमकीन, अंग्रेजी जानती हैं, हिंदुस्तानी मालूम है।
1: सिनेमा के दीवानों को तो हर चीज ताज्जुब की लगती है, और सबको मना करने के लिए तो तुम हो ही।
0: हम लोगों तक को तो मालकिन के दर्शन होते नहीं, फिर बेचारे ये कैसे उनसे मुलाकात कर सकते।
1: लो।
0: हेलो जी, मालकिन शहर में नहीं है, इस समय बात नहीं हो सकती, एरोप्लेन से गई हैं। अगले हफ्ते कोशिश करके देख लीजिएगा। हाँ हाँ, राइट राइट।
1: अरे तुमने तो एकदम झूठ कह दिया कि मालकिन घर में नहीं है। वाह, है क्यों नहीं, तुम्हें भी संदेह हो गया है?
0: अरे उनका प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: तुम्हें तो फोन पर बात करने में भी आफत लगती है, यहाँ आने वालों की खातिरदारी करते करते उनके सवालों का जवाब देते देते सर में दर्द हो जाता है।
0: अरे रे रे रे, फिर घंटी।
2: सर, सर्कुलेशन बढ़ाने के दूसरे उपाय भी मेरे पास हैं।
3: अरे भाई, कौन से उपाय
2: जी?
3: क्या उपन्यास, कहानी, लेख, कविता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं चलाने का इरादा है क्या?
2: जी नहीं सर, वो सब नहीं सर।
3: तो फिर सिने स्टारों से भेंट क्यों ना शुरू करें?
2: यही तो मेरा प्लान है सर। भला मंत्र वंत्र से कहीं काम वाम बनता है? उसे तो चतुराई से प्राप्त करना पड़ता है।
3: हाँ हाँ, आजकल के लोग भी इसी के मत वाले हैं। सिने स्टारों के संबंध में अगर मजेदार बातें छापना शुरू कर दो तो बस सर्कुलेशन भी इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाएगा कि हम कापियां सप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझे?
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। पर सर, शुरू शुरू में ऐसे सिनेमा स्टारों से भेंट करनी चाहिए जो प्रसिद्धि हासिल कर चुके हों, तभी।
3: ठीक है ठीक है, वो उस पारिजात से क्यों ना भेंट की जाए?
2: जी हाँ, वही प्रयत्न तो कर रहा हूँ।
3: फिर देर क्यों करते हैं, जाइए जल्दी से जाइए, धड़ाधड़ शुरू कर दीजिए अपना काम।
2: सर, अगर पारिजात की भेंट यानी इंटरव्यू हमारी पत्रिका में निकल गया ना, तो समझिए बहुत बड़ी मंजिल तय कर ली।
3: अरे भाई साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूँ।
2: मगर मालूम होता है सर कि उससे मुलाकात करना बड़ा ही मुश्किल काम है सर।
3: मगर ऐसे कामों में सफल होने पर ही तो महत्व मिलता है, तभी तो हिमालय विजय, एवरेस्ट विजय आदि

0: शीर्षक देकर बड़े अक्षरों में यानी बोल्ड टाइप में प्रकाशित कर सकते हैं।
1: आप देखते जाइए सर, हमारा सर्कुलेशन 1:10 होता है कि नहीं।
0: बस तब तो हमारे पास विज्ञापनों का ढेर लग जाएगा, समझिए आपके भी इंक्रीमेंट बोनस आदि का सिलसिला हो जाएगा।
1: जी
0: जाइए, कार ले जाइए।
1: जी जी, क्या टैक्सी में जाने के लिए कह रहे हैं सर?
0: नहीं तो क्या, आप खर्च की परवाह मत कीजिए। आप जिससे भेंट करने जा रहे हैं वो कोई मामूली स्टार नहीं है, इस बात को याद रखिए। साथ में कैमरा भी ले जाइएगा।
1: ये खूब कही, कैमरा के बिना तो सर मैं किसी से भेंट करता ही नहीं।
0: फिर भी याद दिला रहा हूँ, वो माला बनाते हुए या तरकारियां काटते हुए उसका एक स्टिल जरूर ले लीजिए।
1: देखा जाएगा, जैसा मौका होगा सर वैसा ही करूंगा।
0: तो बस जाइए, शुभ मुहूर्त देखकर जाइएगा, कहीं राहु काल या यम खंड में न चले जाइएगा। अकेले ही जाइएगा, चाहे तो मदद के लिए ऑफिस भाई को भी साथ ले जाइए।
1: अरे वो क्या मदद करेगा सर,
0: साथ रहे तो अच्छा ही है, वो आपकी तारीफ का पुल बांध देगा, आपका परिचय यूं देगा कि ऐसे वैसे आदमी नहीं है, उस पत्रिका के संवाददाता हैं जो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ी जाती है, और हिंदुस्तान में भी इस पत्रिका के ग्राहक सबसे ज्यादा हैं, आदि आदि।
1: वो सब मैं देख लूंगा सर।
0: अच्छा
1: सर, अच्छा
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
2: अरे ओ कड़म्मा, मालूम होता है कोई बहुत बड़ा जिद्दी, देखो तो कार से आया है।
3: आने दो, कार से क्या होता है, यहाँ तो जो भीख मांगने के लिए आते हैं वो भी कार में ही आते हैं।
2: वाह वाह, क्या बात कही है, सभ्यता से भीख मांगने का काम कार से ही हो सकता है, लेकिन हाँ हमारी मालकिन से इनकी दाल नहीं गल सकती।
3: समझ में नहीं आता कि इनकी खातिरदारी करें या यूं ही विदा कर दें।
2: कड़म्मा, औरों को तो यूं ही हम वापस भेज देते हैं, कम से कम इनको अंदर आने दो, देखें क्या होता है।
3: हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आने वालों से बातें करते करते तो दम ही निकल जाता है।
2: तुम रिसेप्शन के कमरे में चाय या कॉफी रख लो, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ।
4: मिस पारिजात है?
2: हाँ है, आप कौन है?
1: मैं पारिजातम पत्रिका का संवाददाता हूँ।
2: क्या कहा, पारिजातम पत्रिका? पर हमारी मालकिन की तो ऐसी कोई पत्रिका नहीं, अपनी कोई निजी पत्रिका निकालने के लिए आपको बुलाया है क्या?
1: खुशी से निकालें, मैं उसका भी श्री गणेश कर दूंगा।
2: आपकी बात समझ में नहीं आती, मालूम होता है पत्रिका के संवाददाता ऐसे ही बात करते हैं।
1: हमारी बातें तो पाठकों को ही पसंद आती, क्या तुम पारिजातम पढ़ते हो?
2: ये लो, आप तो बार बार पारिजातम का नाम ले रहे हैं, यह तो बताइए कि यह पारिजातम है क्या?
1: वो हमारी निजी पत्रिका है भाई।
2: अरे अरे, आप ये क्या करते हैं, मेरा फोटो खींचकर अब क्या कीजिएगा, मैं कोई सिनेमा स्टार थोड़े ही हूँ।
1: क्या सिने स्टार के नौकरों को जानने के लिए हमारे पाठक उत्सुक नहीं है?
2: हाँ तो नौकरानी को भी। कड़म्मा,
1: ये कोई बड़ी बात नहीं, उसका भी एक स्नैप ले लूंगा। कहाँ है नौकरानी, बुलाओ।
2: आइए आइए रिसेप्शन के कमरे में। कड़म्मा, ये पत्रिका के संवाददाता है, इनके लिए कॉफी लाओ ना।
1: अरे अरे रहने दो भाई, कॉफी नहीं, कॉफी तो मैं पीकर आया हूँ।
2: बदले में आप कॉपी देंगे ना?
1: क्या फोटो की कॉपी चाहते हो? जरूर दूंगा जरूर दूंगा।
2: अब तो समझिए ये काफी उसका एडवांस है, संकोच मत कीजिए, लीजिए ना लीजिए।
1: अच्छा अच्छा, मैं काफी पी लेता हूँ। पर ये बताओ, पारिजातम से भेंट कब हो सकती है?
3: क्या आप मालकिन से मिलने के लिए आए हैं?
1: हाँ, बल्कि भेंट के समाचार के साथ साथ तुम दोनों का फोटो भी।
3: हाँ, लेकिन मेरा नाम बल्कि नहीं, कड़म्मा है।
1: ठीक है भाई ठीक है, पत्रिका में तुम दोनों का फोटो छापेंगे, तुम लोगों की तारीफ भी लिखेंगे।
3: हमारी तारीफ क्यों करेंगे?
1: अरे क्या बात करते हो, नौकर ही तो मालकिन की कीर्ति के कारण होते हैं।
2: भला इसे लोग क्या जाने?
1: अरे ये बताना ही तो इस भेंट का उद्देश्य है।
2: तो खुशी से छापिए, आपको जो भी मदद चाहें हम करने के लिए तैयार हैं। कड़म्मा, जाकर कह दो संवाददाता जी पधारे हैं।
5: आपने कॉफी पी ली?
1: जी हाँ पी चुका।
5: ओह, तभी तो कॉफी पीने के बाद भी आप लापरवाही के साथ यहाँ बैठे हैं।
1: क्या किया जाए, पाठकों की भलाई के लिए सभी तरह से सहना पड़ता है। मुझे तो ले जाकर उस जगह पर बिठाया जहाँ एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था

0: 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए।
1: ओ, आप क्या समझते हैं आने वाले घंटों बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ काम है, धंधा है।
0: हाँ ठीक ही तो है, केवल पत्रिका के संपादक ही भेंट करने आते तो और बात थी, पर दुनिया भर के ऐरे गैरे लोगों का यूं आकर उपक्रम करना उचित नहीं।
1: प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नाटक कंपनी के मालिक, फोटोग्राफर्स, विज्ञापन करने वाले, नौकरी की तलाश में आने वाले, सगे संबंधी वगैरह वगैरह, ओ माय गुडनेस, मेरी जान खाने वालों की गिनती नहीं।
0: इसीलिए आप ऐसे उपाय काम में लाती हैं मालूम होता है।
1: नहीं तो जान कैसे बचेगी। फिर भी अगर कोई चलने का नाम नहीं लेता तो मैं गाना गाना शुरू कर देती हूँ।
0: कुछ भी हो, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए।
1: ओह नो, मगर मेरे ऑटोग्राफ्स लेकर मेरी जन्म पत्रिका नहीं बना दीजिएगा।
0: तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जन्म पत्री ही दे दीजिए।
1: खास कर मुझ जैसी स्त्रियों की जन्म पत्री तो कोई बना ही नहीं सकता।
0: हाँ ये तो सही है, क्योंकि जन्म की तारीख, नक्षत्र आदि तो आप बता नहीं पाएंगी।
1: आप बड़े होशियार मालूम होते हैं, मैं तो अक्सर किसी से मिलती ही नहीं।
0: फोन से इंटरव्यू यानी भेंट देती हैं या नहीं?
1: फोन कॉल के लिए आदमी रखा है।
0: उसे पार करना तो सचमुच कठिन है।
1: देखिए ना, इतना पहरा रखने पर भी आज 8 लोगों ने फोन पर बातचीत करने के लिए ना जाने क्या क्या तरकीबें की, पर भेंट थोड़ा ही होने वाली थी, साफ साफ इनकार कर दिया।
0: फिर भी संवाददाताओं को इतनी आसानी से आप कैसे धोखा दे सकती हैं?
1: ये क्या कहते हैं आप?
0: आपसे फोन पर बात करने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया, जानती हैं वे कौन हैं?
1: शायद आपका ख्याल है कि वे सब संवाददाता हैं।
0: वे 8 आदमी और कोई नहीं, स्वयं मैं ही हूँ।
1: ओह रियली?
0: हमारी पत्रिका के संवाददाताओं को आपने समझा क्या है? बड़े से बड़े आदमी तक वे पहुँच जाते हैं और उनसे भेंट किए बगैर वापस नहीं आते।
1: फिर भी
0: कुमारी पारिजातम से भेंट करना बहुत मुश्किल है, यही तो आप कहना चाहती हैं?
1: जी हाँ, मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ।
0: कुछ भी हो, मैंने तो किसी तरह से जीत हासिल कर ही ली है ना?
1: कहाँ, आपको भी तो हार खानी पड़ी है।
0: क्या, पारिजात से भेंट करने का गौरव मुझे नहीं मिला?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे साहब, अगर आपने पारिजात से भेंट कर ली होती तो जीत हासिल हुई होती ना।
0: तो क्या मैंने पारिजात से भेंट नहीं की?
1: जी नहीं, मैं पारिजात नहीं हूँ।
0: तो आप पारिजात नहीं?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो मिस पारिजात की डुप्लीकेट हूँ।
0: ओह ओह।

अभी आपने श्री एन राघवन का लिखा प्रहसन अभिनेत्री से भेंट सुना, निर्देशक मुख्तार अहमद।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की आवाजों में। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है राजू सिंह का और फिल्म का नाम है राज 2।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से

0: 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत नीरज श्रीधर की आवाज में। गीतकार हैं कुमार, संगीत है प्रीतम का, फिल्म का नाम है तुम मिले।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत सिद्धार्थ महादेवन शिल्पा राव और साथियों की आवाजों में। गीतकार है समीर अंजान, संगीत है प्रीतम का, फिल्म का नाम है धूम 3।

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है सलाम इश्क।

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है शबाब साबरी, दिव्य कुमार और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जलीस शेरवानी, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है दबंग 3।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की

0: सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है।

0: हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाती संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर

प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है योगेश ने। तर्ज है सलील चौधरी की, फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: आइए अब सुना जाए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है पड़ोसन।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम है पासपोर्ट।

0: अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।
1: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही
2: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे,
1: हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ आगे बढ़ रहे थे।

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

हम तुम फिल्म में सिर्फ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

एफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं रेस, इस फिल्म में कम संवाद में भी सैफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सैफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी इस चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीग से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शिफ्ट। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग दी। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्रेट गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपनी व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत हर रोज दस्तक नहीं देती, कभी कभी किसी की निगाह में, किसी की मुस्कान में या किसी की खामोश परवाह में वो यूं उतरती है कि सारी उम्र उसकी महक साथ चलती रहती है। ऐसे एहसास किस्मत वालों को नसीब होते हैं। जब भी जिंदगी किसी के रूप में ये अनमोल इनायत बख्शे, उसे अपना हक नहीं रब की मेहर समझकर संभाल लेना, क्योंकि दिल को मोहब्बत का आसमान हर बार नहीं मिलता।
1: मिलती

कभी ये दुनिया चाहे कितनी ही हसीन क्यों ना हो, उसकी सारी रौनक तेरी दो निगाहों के आगे फीकी पड़ जाती है। अब तो मेरी धड़कनों का पता भी इन्हीं आंखों से पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरा सारा जहां इन्हीं में आकर बस गया है। इन्हीं में सुबह की पहली किरण और इन्हीं में शाम की आखिरी रोशनी, मेरी हर राह अब इन्हीं की तरफ जाती है।

उसके आने की आहट भर से जैसे मौसम अपना मिजाज बदल लेता है, हवाएं कुछ ज्यादा ही महकने लगती हैं, फूलों को जैसे मुस्कुराने की वजह मिल जाती है, धूप भी नर्म पड़ जाती है और शाम अपने आंचल में सुनहरी रंग समेट लाती है। उसकी एक मुस्कान से दिल की वीरान बस्तियां आबाद हो उठती हैं। लगता है जैसे बहार किसी बाग में नहीं, उसके कदमों के साथ ही चली आ रही हो।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छायागीत कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेम कभी शब्दों से नहीं, पलकों की हल्की सी झपक और नजरों की मासूम शरारत से अपना परिचय देता है। एक संकोच भरा इशारा दिल में अनगिनत ख्वाब जगा देता है, तो एक मुस्कान सारी दुनिया को भुला देती है। मिलने की चाह है, मगर साथ ही दुनिया की नजरों का लिहाज भी। यही झिझक, यही छेड़छाड़ और यही अनकहे वादे प्रेम को और भी मधुर बना देते हैं। जब दो दिल एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझने लगते हैं, तब हर खामोशी अपने आप में सबसे हसीन इजहार बन जाती है।
1: पलकों

सामने वो हर रोज नजर आती है, पर जैसे हमारे हिस्से की नहीं। उसकी एक झलक ही दिल की धड़कनों को बदल देने के लिए काफी है। फिर भी न जाने कैसी दूरी है जो कभी मिटती ही नहीं। आंखें हर पल उसी राह पर ठहरी रहती हैं, जहां उसके आने की उम्मीद बसती है। मौसम बदलते रहते हैं, दिन बीतते जाते हैं, मगर इंतजार का रंग फीका नहीं पड़ता। प्रेम का सबसे गहरा दर्द शायद यही है, जब कोई इतना करीब हो कि दिखाई दे और इतना दूर कि छू भी न सके। तब हर दिन एक आस बन जाता है और हर रात उसी अधूरी चाह का नाम।

0: सावन केवल धरती को ही नहीं मन को भी भिगा देता है। हवा का हर झोंका जैसे प्रेम का कोई अनकहा संदेश लेकर आता है। प्रकृति का हर स्वर हृदय में नई उमंग जगा देता है। ऐसे में मन मोर की तरह थिरक उठता है और भावनाएं किसी बहती नदी की धारा सी अपने आप दिशा खोजने लगती हैं। विरह हो तो बादलों में प्रिय का संदेश सुनाई देता है और मिलन हो तो हर बूंद उत्सव बन जाती है।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

आज के छाए गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यकीन हो जाती है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली
1: के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक

0: पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged